इस शब्द विच प्रभु नू मिलन वास्ते मन लोचदा है और प्रभु नू जिहड़ा मिलावे ओदे अगे अरदास

इस देव सिख माली दे कोल होर भी बहुत सारे माली कम सिखदे ने। ए देव सिख जिथे बाग दा काम करदे दूसरिया नू माली दा काम सिखांदा है, नाल गुरबाणी दा भी प्रेमी है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा दा प्यारा एक देव सिख एक दी घरवाली एक 11-12 साल दी इन्हां दी लड़की ए तीनों जी गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए शुभ गुणा दे नाल जुड़े हुए काम कार कर दे अपना जीवन बता रहे ने। मां बाप धार्मिक ख्यालां दे होन ते बच्चियां ते भी इसका असर होंदा। माता पिता अमृत वेले उठदे ने ते बच्ची भी अमृत वेले उठदी, मां बाप अमृत वेले उठ के बाणी पढ़दे ने, बच्ची भी नाल बाणी पढ़दी, ए परिवार गुरबाणी नाल जुड़िया होया। ए देव सिख कदी कदी फुल्लां दा काम करदा अपनी घरवाली और अपनी बच्ची नूं क्या करदा है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुल्लां नाल बड़ा प्यार करदे ने। आनंदपुर साहब जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहिंदे ने उन ऐसा बाग लवाया है, हर तरह दा फुल उस बाग विच मिलदा है। जिस तरह इंसान दी संभाल करी दीए इसे तरह साहब जी फुल्लां दी संभाल करदे। पिता दे कोलों ये गल्लां सुन के

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जी दी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करदे ने, तां प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल, पत्तियां निकल आईयां। तां इस बच्ची ने कपड़े दे एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नूं खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणां नूं मत्था टेक के ए फुल भेंट करना। इस बच्ची दे मन दी यह भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नूं भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहलां ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़ रहा, उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणां सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणां फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उसे तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणां विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद कर

या उस लड़की का तेनू क्या फुल तोड़ मालक दा हुकम कामे ने ते मनना है उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी क्या हाय ना तोड़ कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल पड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापदा है जिवें फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया कहंदा जा रहा मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उसके कन्ना विच भी इक्को ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है देव सिख इहदी घरवाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय तन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता इन्हां ने हथियार चुके ये लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया ए हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे ये सारे लोग एक फुलां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल अस रहे ने मैं कर रहे ने खेड़ खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुरक पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुरक पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुरका पठाना ने अपने पैरां थले इन्हां फुलां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुरक पठान फुलां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुलां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुलां नूं लताड़न वाले ठठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुलां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के
जसवंत राय दी अख खुल गई। सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया। जसवंत राय कहन लगा, भलीए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओहो कई वारी सानूं सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझते कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़ते ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानते ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकन की जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखे है ये हिंदुस्तान के लोग कई मजहबां दे, कई जातां दे, ये दुखी ने क्योंकि तुरख मुगल जुलम पै करते ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करते ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म की रख्या वास्ते, हिंदुस्तानियां की रख्या वास्ते, मजलूमां की रख्या वास्ते। जेड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तों बेमुख हो गए हां। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते, वो अपने वास्ते नहीं लड़दा। और मैं भी पैसे दे हंकार विच गुरु तो दूर हो गया, पर हुण मैं भी आनंदपुर साहब जावांगा। पर चल पहला देव सिख दे घर चलिए, देख के तां सही उस बच्ची दा की हाल है। जसवंत राय अपनी घरवाली दे नाल ओ फुल लै के देव सिख दे घर वल तुर पिया। मन विच पछतावा कि मैनू की पता सी ओ बच्ची फुल दे नाल।

थक आए कर बंधना रखबार थक पड़ो प्रभु दरबार थक आए प्रभु की शाम चार कुंठ दस परमे जोन अनेक बिखे परम आयो आए अनेक जन्म परम शरणी लख चौरासी जुना परम दे से पाशाह तुहारे द्वारे आया आए अनेक जन्म।

चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश दे नाल अगे वधदे हुए चकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच चकारा छड़ना है, ताकि यह साडी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 दी लड़ाई लगी तां फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, तां उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियां नूं गजा पाई, कलगियां वाले दा जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौकी ते। और ये हकीकत है, हिंदू कैप्टन हुए फौजी फिर वापस आए इस चौकी ते आके फिर हिंदुस्तान दी फौज ने कब्जा किया। आओ, ये कलगियां वाले दी बख्शिश की नाम जकारा सा

हेठ पुकारा। धरती ने रो के पुकार कीती है निरंकार, मैं बड़ी दुखी हाँ।

अरने तेरे वास्ते मिठे खरबूजे भेजे सन। तू ए अख दा बूटा ना समझे, ए तेरे लई आए सन। शंका ना कर, तोड़ के खा लै, पर एक शर्त है, एक ध्यान रखी, किते पले ना बन लई।

पेट भर के रज के खाइया अखां दियां खखड़ियां वेख के निहाल होइया। गुरु नानक दी नजर हो गई अख दी खखड़ी ते अंब ते अनार मर्दाना तोड़ तोड़ खाऊंगा। ऐसे अमृत फलां दा स्वाद लै रहा पर कुछ पले भी बन लिया। आख्या फिर भूख लगेगी फिर पाल करांगा। कोई गल नहीं केड़ा पता लग रहा है गुरु नानक नूं। उच्चारण करो श्री राज के खखड़ियां।

जीव जंतु कोई नहीं इसने छड़िया, सारे खा गया। हुण आदमियां नूं खाना शुरू कीता है, जेड़ा स्थिति भुलिया पटकिया इधरों लंघ जांदा है। वड्डा कड़ाया तेल दा भर के रखिया होया, उहदे विच तल के ते खा जाना।

तेरे मुख तो निकलिया होया वाहिगुरु तेरे लखां पाप कट देवेगा। पाप भले पुरखां दी संगत करेगा तां फायदे विच रहेगा, ते जे माड़े पुरखां दी संगत करेगा तां नरकां दा भागी बनेगा। इस दंपति जोड़े ने आख्या महाराज गरीबी दे कारण असी बहुत दुखी हैं। बाबा जी ने आख्या फिर की चाहिदा है? महाराज दो वेले दा सोना खानन पहनन नू मिल जवे ता कुटान कुटान शुक्र है। बाबा जी ने आख्या भी सुखमनी पड़िया कर, सुखमनी सुखां दी दाती है। इस विच 24,000 अखर ने ते 24,000 सुवास प्राणी नित दे लैंदे। जेकर एक पाठ भी श्रद्धा नाल कर लवे ता 24,000 सुवास लेखे विच आ जांदे ने। इन्हां ने हथ जोड़ के बेनती की थी, बाबा जी असी ता पढ़े लिखे नहीं, बाणी नहीं पढ़ सकते, सानू ता कृपा करो जिस खाली चोली नू प्राण तुहाडे कोल आए ओ चोली भर दिओ।

मेरी तन दौलत संपदा कौन सांभेगा। बाबा जी ने आख्या भी पलिया पलाया पुत्र तेनू दे दिए। इन्हां ने आख्या महाराज जिवें

दारिस ते इतना प्रसन्न होया, इतना प्रसन्न होया कि एक दिन इसने आख्या कि तू मेरे पुत्रां वर्ग है, ये जो कुछ भी मेरा है ये सब तेरा ही है, ये सारे सुख तेरे ने। ते गुरु प्यारे जदो सब कुछ इन्हां नूं मिल गया, भुख नंग दी पीड़ कटी गई, ये फिर बाबा जी दे चरना चाहे। बाबा जी ने आख्या भी हुण की चाहिदा है, महाराज दुनिया दे सारे सुख तां मिल गए, हुण नाम दा लाल साड़ी चोली च पा दी। हजूर ने आख्या फिर बई जिवें पहला पढ़दे सो प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, ते हुण पढ़िया करो प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध, ता आत्मिक दाता दी तुहाडी चोली विच आत्मिक दाता पै जावणगी। ता उस दिन तो इन्हां ने पढ़ना शुरू कीता प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। ता ऐसे सन बाबा जी, जेकर कोई दुनियावी शै वी मंगण आउंदा ता नाल ओनू ओ वी देंदे, पर नाल नाल बाणी दे नाल वी ओनू जोड़ देंदे, क्योंकि महापुरख दा ता कम है वाहिगुरु दे चरणा नाल जोड़ना। सुई सुहागा संत जन ए तीनों है जोड़न, सुई भी जोड़दी है सुहागा भी जोड़दा है ते संत जन भी टुटे हुए बंदे नू वाहिगुरु नाल जोड़ देंदे। इसलिए प्यार वाले कवि ने आख्या भी रब दा नाम जपावण दे ले दुनिया दे विच आए, ओ किसे आवागमन दे चक्कर विच नहीं आए, ए ता नाम जपण वाले

नहीं तो फिर बई तू सोच लै, क्योंकि नाम जपण वालियां दे नेड़े जमदूत भी नहीं आ सकते, तो तू किवें आ जाएगा। ता जदो बाबा जी ने रोह दे विच खूंडा खड़काया, ता ए नट लगा

सुखमनी दा नाम पानी दा तुरा बनना। सेवका ने आख्या जी सत बचन। बाबा जी ने आख्या जिथे एक दो पाठ जा पंज सत पाठ सुखमनी साहब दे रोज कर दे ना, हुन लगातार सुखमनी दी

कर किधरे मन ने कह भी देना मैं अज नाम नहीं जपना ते बाबा जी ने खूह दी डार उत्ते जा बैठना खूह दी बनी जा बैठना कि मना जे नाम नहीं जपेगा सोवेगा आलस करेगा ते फिर तू खूह विच गिरेगा ते मर जावेगा ऐसा डर पाके मन नू निरंकार नाल जोड़ना बाबा जी 12:10 ते नितनेम विच आ जांदे सन ते 12:10 ते जदो आपने सिमरन करना ता कलयुग ने नींदर नू भेजना भी जा इना नू नाम ना जपन दे ते बाबा जी ने केसां नू किली नाल बन लेना आखना जदों नींद आवेगी ता केस खिचे जावणगे ते दर्द होएगा ता मैं फिर उठ के नाम जपन लग जांगा साध संगत बोलो श्री वाहे गुरु क्योंकि नाम जपन वाले हर वेले यही अरदास करदे हन निरंकार ना विसरी ना विसारी आप दयानु आप दे करी इस तरह अनेक ही रूहां नू आप भी जपया बाबा जी ने ते दुनिया तो भी जपाया जे किसे हिंदू ने आउना ता बाबा जी ने कहना भई गायत्री दा पाठ करया कर जे किसे मुसलमान ने आउना ता बाबा जी ने आखना भी 5 निवाजां गुजारिया कर जो कोई तुहाड़ा धर्म है उस विच परपक रहो ते जेकर सिख ने आउना ता आखना भी मन विच एक टेक रख ले गुरु नानक दी गुरु नानक तेरे सारे कार्य सवारेगा ते ऐसे अमोलक

जदो इतनी निम्रता वाले वचन सुने ता आख्या रिखी जी तुसी ता सानू ही ले लिया है। सच है प्यारियो प्रभु दे भगत नाम जप के प्रभु नू ही पा लेंदे ने। दुनियावी लोक दा बंदगी करके दुनिया दी शिया मंगदे ने पर रब दे प्यारे ता रब नू ही मंग लेंदे ने। ता इस तरह बाबा जी ने पूरने पाए कि किवें सिख ने गुरु ग्रंथ साहिब नाल प्रीत पाउनी किवें हाजिर नाजर समझ के भोग लगाउनी। आप क्या करदे सन जदों भी प्रसाद छकिए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खारी। जदों भी पहनिए ता आखिए गुरु नानक तेरा दिता खादा पहन रहे। तेरी बख्शी सदका सारियां खुशियां मान रही। ता इस तरह बाबा जी ने कई पूरने पाए ते जो कोई भी आंदा उसनू यही कहंदे भई इक दा हो जा। बहुते दरवाजियां दा प्रौणा भुखा रहंदा है इसलिए बाबा जी हर किसे नू यही कहंदे सन भई जे तू गुरु ते प्रतीत लियावेंगा गुरु नाल प्रीत पावेंगा प्यार करेगा तो गुरु तेरे सारे कार्य सवारेगा। अचिंत काज करे प्रव तिनके जिन हर का नाम प्यारा जिन्हां नू नाम प्यारा लगदा है वाहिगुरु आप उन्हां दे काज सवार दे। इस तरह हर किसे नू जिवें भी होना बाबा जी ने उदी सुरती निरंकार दे चरणा नाल जोड़ देनी। इसे लई तां अज संगतां

नवा शुरू करन लगे सा सोचिया दर्शन करे आईए ते फिर इन्हां ने हाथ जोड़ के बेनती कीती बाबा जी की करिए नितनेम दा वेला ही नहीं मिलता। ता बाबा जी ने

बोलेगा, हर पंक्ति विच जीवन दी सोजी है। इस सोजी नू सुनियो भी ते चलियो भी, दास गरीब दा भी भला हो जाएगा।

ते वाहेगुरु हे ईश्वर साडा सुभाई है भूल जान असी कल जुगी जीव जो होए साडा सुभा है कोई सानू अखां विच पाण लई सुरमे दी सिलाई दे देवे असी उसका तो धन्यवाद कर देंदे हां पर तू सानू सुंदर नेत्र बख्शे हन कंचन वर्गा शरीर बख्शिया है चंगा रहन बहन पहनन ते होर बेअंत कृपा तू कीतियां हन असी तेरा शुकराना नहीं करदे तेरा शुकराना भूल जांदे हां इसलिए हमरो सुआओ ए साडा सुभा ही बन चुकिया है जे एक जन्म दा होवे सुभा तो बदल लईए कईयां जन्मां तो यही सुभा तुरिया आ रहा है इसलिए तेरी रहमत ही सानू तार सकती है तेरी बख्शिश ही सानू तार सकती है ए ईश्वर अगे सारिया ने मिल के अरदास करनी है हमरो सुआओ हमरो सुआओ साडा की सुभा है आद अंत जो राखन हार ध्यान देना

तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी महाराज अपने इस शब्द दे विच उपदेश देंदे हैं। सतगुर बाजो गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाउ बुरा। सतगुरु तो

ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज पया। ऐ इंसान तू अपने अंदर झाती नहीं मारदा, तू ते माया दा गुलाम हो गया।

परमेओ मूड़े ममता लागे तुद हर विसरे तू क्रोध दे वस हो गए काम दे वस हो गए ममता दे

गुरु अमरदास जदों गुरु नहीं सन बने हर साल हर द्वार गंगा नहाण जाया करते सन। इस वरी भी गंगा नहाण जदों गए एक ब्रह्मचारी महात्मा मिल पिया, ऐसा प्यार पिया, इकट्ठियां यात्रा

गुरु अमरदास जी ने बैठ के शक लेना। जे गुरु अमरदास जी ने प्रशादा पकाना, उस ब्रह्मचारी ने नाल बह के शक लेना।

अगू जवाब दिता, पिता जी गुरु नानक साहब की जोत होण साडे पिता जी विच है, ओ हन गुरु अंगद साहब। ए सुन के गुरु अमरदास उसे वक्त तैयार होए। भावें गुरु अमरदास अते गुरु अंगद साहब रिश्ते विच कुड़म लगते ने, पर कुड़म बन के नहीं, सेवक बन के गुरु अमरदास गुरु अंगद साहब को आए, नमस्कार कीती ते कुंजे ही बैठ गए। क्या महाराज मैं कुड़म बन के नहीं सेवक बन के आया, मैं निगुरा हां, मैं गुरु वाला बनना है। गुरु अंगद साहब दयाल होए, गुरु अमरदास नूं अपने चरनी ला लिया ते गुरु अमरदास ने इन्नी सेवा कीती, पहला गुरु वाले बने ते फिर आप गुरु अमरदास बन गए। सेवा सदका जदों गुरु बने फिर दुनिया नूं उपदेश कीता कि भाई मेरा गुरु कोई नहीं सी जदों, ते ब्रह्मचारी ने ताना मारिया सी कि तू निगुरा है, तेरे हाथ दा खाना खा के मेरा जन्म भ्रष्ट हो गया, इस करके आओ भाई तुसी भी गुरु वाले बनो।

दुबधा पिए ऐ पाई गुरु प्रसादी एको जाने एक घड़ी में पार पिया जेड़ा गुरु दी कृपा द्वारा गुरु दे कहे ते चलदा है ओदा एक घड़ी विच उधार हो जांदा है नहीं ते इंसान मोह माया विच डुबदा रहिंदा है।

नाम है अष्टावक्र। कहने लगे राजे जनकनु, मैं तेरा गुरु बनांगा। सारे हंस पे। कहन लगे अपनी शक्ल नहीं देखदा, कुब निकले ऐसा तुर नहीं सकदा, बच्चे शक्ल देख लैन ते सारी रात सौण ना। आया राजे जनक दा गुरु बनन, पर अष्टावक्र जी ने उन्हां लोकां दे मखौल वल ध्यान नहीं दिता। राजे जनक नूं कहा, मैनू पेट

तू घोड़े ते चढ़े क्योंकि तेरा मन मेरा हो गया थले उतरिया। सोझी हो गई कि सारा झगड़ा ही मन दा, जद मन वस विच आ जाए उदो इंसान गुरमुख भगत महापुरश बन जाता है। ते मन उदो वस विच आंदा है जदों गुरु का उपदेश मिलता है। जदों असी अपना मन गुरु नूं दे देने हैं फिर साढ़े सारे कार्ज रास हो जाते हैं। गुरु साहिब जी बाणी विच भी

एक शब्द तू चीने नाही फिर जूनी आवेगा। जदू तक शब्द की विचार नहीं करेगा जूनिया विच पटकदा रहेगा। इस वास्ते उपदेश है तुझ सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरानू ना सिखाल बिखिया पहला पहा पया पा दे पिछो दे गल चाटड़िया। एक एहो जो उपदेश लोकां ने क्यों माड़े पासे लाना है। पहला जमां दा फाहा तेरे गल पवेगा ते पिछों तेरे चाटड़िया दे।

नाम जपण वाली, ना पति है ना कोई पुत्र है। ए राम सिंह, ए चारों भरा एदे नाल बोलदे नहीं, इनू मन होश गरीब समझते ने, कोई एदा सत्कार नहीं करता। अरे बड़ा सिमरण करती कपा चुगी वाहेगुरु वाहेगुरु करके सूत्र उणिया वाहेगुरु वाहेगुरु करके कलगीधर पातशाह वास्ते एक खेस उणिया वाहेगुरु वाहेगुरु करके रोज अरदासां करती ऐ कलगीधर पातशाह। पति सिर ते नहीं, पुत्र तू कोई बख्शिया नहीं, किदी बांह फड़ के तेरे को लावां, किन्ना चंगा होवे जे तू मैनू दर्शन देवे, एक खेस लै लवे मेरे मन नू ठंड पै जाए। ये अरदासां कर दी, उधर सहबन खिंच पै।

तेरे पिंड चलना। राव सिंह बड़ा खुश होया। पिंड वाले नु पता लगा, तैयारियां होने लग पईयां कि गुरु साहिब ने साडे पिंड आना।

पर साहब जी बड़े बेचैन होके उधर आदर तकदे ने, क्योंकि उधर बीबी देसा अरदासा पे कर दी, तो खिच

चरण फड़ ले, अथरू नहीं रुकते, कोई इज्जत नहीं देंदा, कोई मान नहीं देंदा, पर जदों पिता गुरु मिलिया मन फिस गया। ऐ मना पिता गुरु घर आया हुण गुरु नूं अपना दुख दसना, अपना सुख भी तां इहनूं कहना है, होर कौन है। पता नहीं किन्ना चिर बीत गया, कली तर पातशाह ने प्यार नाल सिर चुके आख्या, बेटा ये साडा खेस संभाल के रख, अस फिर आके लै जांगे, नाले रोटी भी खावांगे। बीबी दिसा किस आनंद विच गुआच गई, सबा फिर घोड़े दे छाल मार के सवार होए। राम सिंह अगे उड़ीक रहा सी, ओदे पिछे जा पहुंचे।

करोगे तुसा मेरा की सत्कार करना है। और मैं कड्डो मना विचो देखो इनू मथा, तुसी चार भरा हो अमृत छके पर आपस च प्यार नहीं।

हम बड़ा बम की कहा सुहा गर्व न कीजे नान का मत सिर आगे करोड़िया तो केड़ी चीज का माण कर जवानी रे जवानी सदा नहीं रही आउंदी है चली जाए झूठा हुकूमत का माण कर दे इस संसार च बड़े बड़े राजे महाराजे हैं जिन्हों का नामो निशान नहीं है माया का माण करदा यह भी झूठा हुआ माया ये तो चलता पानी ए माणवी की निरंकार ने तेन मनुष्य जन्म दिता चंगे कम करने हौमे हंकार फिर रहे हैं याद रख एक दिन पछता है साहबा का पवित्र पावन उपदेश इस वेले करोड़िए पत्थर वर्गा मन पानी काठी सिर तो रख दिती दूजी छिन विच मेरे धन गुरु नानक पातशाह के चरणा से दसा रोज लग पातशाह मेरू बख्श लो मैं पापी मेरे कोलो भुल हो गए अपने चेहरे के दाग जेड़े दिस दिन जे शीशे को जाइए शीशे को ना जाइए तो पता ही नहीं लगता इसे तरह अपने कीते कर्म जेड़े हैं उन्हां दा पता तां लगता है जे किसी महापुरुष के दर्शन हो जाए महापुरुषों का जीवन साफ शीशा हो अज धन गुरु नानक पातशाह जी निरंकारी जोत बाबे के दर्शन करके करोड़िया रो रही उबा मार के रोई जाता कहता है पातशाह मेरे बख्श अरदास कर आओ आप भी करिए किस तरह करोड़िया नाले रोंदा है ते नाले पढ़ पहला सेवक बोलेगा पिछे सारी समझ

रो लिया थे। रो रो के मेरे तन गुरु नानक पातशाह ने चरना रुप्त हो पातशाह बस अदूर कहन लगे मरदानिया बख्शीए। मरदाने ने कहा महाराज अगे मेनू पुछ के बख्श दो, ये तो बिरद है जो शरण आवे तो तंठ लावे ए बिरद सदा। तो हजूर ने अमे दृष्टि तकिया तो क्या करोड़िए फिर जप सतना संसार रोगी नाम करोड़िए नाम जपे नाम जपेगा तेरा मन पवित्र नाले बाणी पढ़िया नाले सत्संग भी करिया करते करोड़िए तेन निरंकार ने माया दिती है दान पुण्य को आज माया भी कर सत्य हूं करोड़िया सेठ गल च पला पा के कहता पातशाह एक बेनती मेरी करवा केड़ी पातशाह नाल ही मेरा पिंड हूं मेरे घर चल मैं थोड़ी सेवा तुहानू प्रसाद छकावा दुध पिलाव। अदूर कह लगे क्यों मरदाने चलिए। मरदाने ने कहा महाराज भी कोई पुछण वाली गल है चलो हूं तोड़ा सिख बन गया चौड़िया। अदूर कह लगे मरदानिया अजे सिख नहीं बने पातशाह किस तरह। हजूर कह लगे मरदाने अजे सिखी दिती सिखी की है हुक्म ते जे हुक्म मनेगा तो फिर ही साडा सिख सिखी गल्ला भी सिखी गल्ला दी सिखी कमजोर सिखी का स्वरूप की है उस वाहिगुरु का हुक्म हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल करोड़िए जो तेनू असी उपदेश दिता है ओनू कमा जे तू कमाएगा फिर अरदास करी असी आवांगे तेरे घर प्रसाद ही छकांगे। ते आके वाहिगुरु दे नाम दा पवित्र जो अमृत है ओदा प्रवाह और करोड़िए चरना ते कहते पातशाह मैं गरीब ते भी बख्शिश कर दिती है। हजूर कहन लगे करोड़िया बख्शिश मेरे वाहिगुरु दी जिस वेले बख्शिश का समा आता है तो जिना संभाल लेता है वह पाए करोड़िए बख्शिश होगी थोड़े उत्ते भी गुरु की बख्शिश हो बख्शिश वाला समा बख्शिश तो शरीर ही है। बाबा आदम सिंह जी महाराज वचन करते सन उस वाहिगुरु की सदा ही मेहर है पर उस मेहर को संभाल लेना यह वही आप जिना के भागा बच्चे बस दो वेले आके आप कीर्त नहीं जुड़े जिन्हों से गुरु जी कई आने ही नहीं कई नावे पाई जाते पर कई ऐसे प्रेमी भी हैं जिन्होंने किसी कीर्त च नागा नहीं पाया जो कीर्तन च नागा नहीं पाएगा तो गुरु नानक की बख्शिश ही नागा नहीं पाएगा। चौड़िया ये मालिक की दात ये जोर भी चीज नहीं न्यूयॉर्क तू टेलीफोन आया है कदों वापस आ रहे हो छेती आ जाओ किसी पासे उड़ीक है ते कई गुरु प्यारे तुहाडे वर्गे माई भाई कीर्तन दा अमृत पी तो ए दात गुरु की अपनी है। हजूर कहण लगे मरदानिया रवाब चुकी ते शब्द ही अकेली तक पड़ी मरदानिया ने रवाब चुकया ते बाबे ने सोने गले ते सबका की किया और सारे पढ़िए कीर्तन की समाप्ति करिए।

0: जो गुरु का देश सहबा ने करोड़िए के बख्श और असी भी इस उपदेश को हृदय च बसाइए कमाई करिए जो साडा भी जीवन सफल फिर सानू सदा वास्ते की मिलेगा साडा ये लोग सुखी है पर लोग सुखे ने हर पल आते मिले और कैरी सात संगत जिथे होस्टल दिया संगत गुरुद्वारा साहब के प्रबंधा के उद्यम नाल दास रोज आप जी के दर्शन करता है ते आप शब्द द्वारा गुरु नाल तो अज गुरु दरबार साहिब अमरीकन सिंह ये गुरु प्यारा जत्था ये भी इतने ये भी साडे वीर भाई गुरु नानक पिता है एक पिता एक उसके पारक तू मेरा गुरु जो गुरु नानक का सिख गुरु की मर्यादा विच रहेगा भाई उसदे कोई विच नहीं है सारे बापू के बच्चे हैं तो गुरु प्यारे भी आए हैं तो शब्द एक शब्द की हाजरी वो लगवाण गए उस तो उपर कीर्तन की समाप्ति अमृत वेले का प्रोग्राम भी है कल शाम जिस तरह रूटीन चल रही है उसे तरह कीर्तन धन गुरु नानक पातशाह आप जी भी महान महान बख्शिश द्वारा बरफुरदार गुरमुख प्यारे गुरसिख आप जी ने बख्शे खजाने विचों कीर्तन भी है शब्द आदर करते डालर अरदास कराते मेरे अंतर जाने गुरु नानक जी आप अपने गुरसिखा बच्चिया सिखी जीवन सदाचार दिया कला बख्शो आओ फतेह बुलाओ प्यार
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु Thank you.

महादेव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देव, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रे साए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन।

ते ज्ञानेश्वर जी ने अपना लोटा लिया रस्सी नाल बनिया ते अपने योग बल दे नाल उस खूह दे विच जो पानी सी जो थले सी उस नू लोटे विच परिया ते बाहर कड करके नाले ते अपनी प्यास बुझांदे गए नाले फिर

ईश्वर जी महाराज ने भगत जी तुसी भी पानी पियो ते नामदेव जी ने इनकार कर दिता। कहन लगे महाराज मैं केवल अपनी प्यास नहीं बुझाना चाहुंदा, मैं चाहुंदा हां कि आन वाले समय दे विच जो राही इस राह तो गुजरन ए कुआ उना दी भी प्यास बुझावे। एदे विच जल जो है वो नको नक परा। ज्ञानेश्वर जी ने समझाया बच्चे तू अपनी प्यास बुझा ता जो असी अगे भी राहे पैना है और द्वारका नगरी पहुंचना है।

परमात्मा दे चरणा कमलां विच जुड़ गए। जदों तार मिली परमात्मा दे चरणा कमलां च ते भगत नामदेव दी जो बेनती सी ओ नारायण ने सुनी, जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते उसे खूह दे विच्चों इक कड़क दी आवाज आई, मानो के धरती फट गई उस खूह दी ते थल्ले जो पानी सी ओ लबा लब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उन्हां दे सेवका ने कि भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरणा कमलां विच कबूल होई है, तां सारे आए

सेवक के भरपूर जोग जोग वाहगुरु तेरा सब सदका निरंकार प्रभु सदा सलामत।